पता नहीं कि मैं कौन हूं। उन्हें टेलीफोन करके अपने स्टाफ ने बुलाया कि यह बंदा अपनी याददाश्त गुआ चुका है, भूल गया कि मैं कौन हूं, इसे समझाओ बे कौन है। गल भावें सौखी है पर गल ये पिछे एक सोच नज़र करती है। असी किसी छोटी जी अहदे नाल किसी भी व्यक्ति को सिर पर चुक लें, यह साड़ी एक गुलाम मानसिकता की निशानी है या साड़ी अपनी होंद तो परेखे परे रख के अपने आप को सोची समझी होने की गल है। आस्ट्रेलिया के कई साल पहला मीडिया के बड़े सामने एक खबर आई जदों के देश के प्रधानमंत्री इलैक्शन कैंपेनिंग किसी के नाल गल कर रहे सन। घर का व्यक्ति बाहर निकल के कहता है कि तुम जरा परे हो के गल करो, मेरे घर का लाण खराब करता। उसनू ये परवाह नहीं कि तू प्रधानमंत्री तो होवेगा घरें होवेगा, पर इस वे तू मेरी प्रॉपर्टी खलोता है। गल च निकी जी है पर गल बहुत वीडी एक सोच आ कि असी कदों अहद्या परे हो के वेखा तो इन मसलियां अपना समझ की गल करा। ये मैं गल् सारिया इस करके कर रहा है कि जदों एक देश का तानाशाही हाकम किसी कौम निस्तो नबूत करने के लिए या इदा कह लवो कि एक व्यक्ति फड़ लई हज़ार फौजी टैंक भेजता है तो उस तो बाद अपने मसले अपने विरोध के बावजूद भी चुका की कोशिश करता है, जिदे वजो जून 1984 जिन्हों सरकार ऑपरेशन ब्लू स्टार कहती है तो जिन्हों सिख कौम अपनी नशलकुशी का नाँ दें। एक नहीं पंजाब के सारे उन्होंने गुरु घर गुरद्वार नाके ला के बंद किया गया, फौज बगावत कर दी है। उस बगावत तो बाद कई साल तक सैकड़े नहीं हज़ार नहीं लखा जवाना का निस्तो नबूत पुलिस मुकाबले होंगे ने, झूठे होंगे ने सच्चे होंगे ने गलत होंगे ने सही होंगे ने, वाइट पेपर लिखे गए सब कुछ लिखा गया पर मसले का कोई संजीदा हल कोई मसले की कहानी कोई सारा गल् वह कितने भी नज़र नहीं आदि। गलों चो गल प्रोग्राम के गल इस करके सी करनी जरूरी सी कि इन विचार लैके असी हूँ अजे तक कितने खड़े हैं तो की खटिया तो की गवाया। सिखा का जिन्हों कहने कोलैक्टिव ट्रॉमा तो आइडेंटिटी का क्राइसिस खड़ा होया। बहुत सारे लोगों ने अपने आप को मुड़ सिखी न जोड़न की गल की, बहुत सारे लोगों ने मॉडर्न जमाने का साडा अजोका घलूघारे का नाम दिता गया। घलूघारा लफज ही अपने आप के एक इतिहास है, उन्होंने इतिहास में जिसनों के सिखा द होलोकास्ट का रिलेशन मनिया जा सकता है। सीधा सीधा टकराओ भारतीय सरकार का तो सिख का बनता है, एक कलैक्टिव सेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी जी है वो ये निकल के सामने आती है। जिथे जिथे असी परदेसी वक्त वक मुल्क गए, 90 मुल्क तो वह दे लोग पंजाबी अपनी भौ छड़ के उन्हें दुनिया उन्होंने थावान गए, उत्थे उत्थे उन्होंने अपना पंजाब बनाया। ग्लोबल सिख डायसपोरा जोड़ा सी वो इस मसले को बहुत संजीदा होकर देखता है तो इस संजीदा मसले की आपातापी नहीं, मैं कहता इस दौड़ दे विच की मिलया की गवाया। मनुखी हकों का घाण होया, उन्हां घाण की आवाज़ दिखाउण वालियां दा कान होया। इस मसलियां नूं सामने रख के होए भी जे असी पिछे मुड़ के वेखते हाँ तो मैनू लगता कि शायद कैलिफोर्निया की सरकार ने अमरीका 2015 दे विच ते 1984 नूं पहला जिहड़ा सिखां दा जेनोसाइड केस सीगा और अपनी लोकल काउंसल दे विच रजिस्टर किया। 2010 दे विच अकाल तख्त साहब दे जथेदार वल्लों भी सिख जेनोसाइड का नाँ दिता गया तो उसके प्रति एक पटीशन जी है वो जारी की गई। कनेडा की सियासत दे विच खास तौर पर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लगातार कैंपेन तो ऑफिशियल रिकोगनेशन जी सिख जेनोसाइड की उन्होंने गल भी की है। दुनिया भर की ग्लोबल वॉच ग्लोबल ऑब्जरवेटरी मैं कह लव ज ग्लोबल एडवोकेसी ग्रुप ने जेनोसाइड वॉच के उत्ते जड़ा इस सारा कुछ रखने की गल भी की है।
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਫੈਕਟਡ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕਈ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੱਥ ਚੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਟੁੰਬਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।